0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं हूँ गगन आपके साथ। आज क्या है, आज हमारे साथ कौन खास जुड़ रहे हैं, कौन मेहमान है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता जगत से, आप पत्रकार हैं, अतुल शाह जी आपका नाम है और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। इनसे हम जानेंगे इनके अनुभव के बारे में, इनके इस यात्रा के बारे में और आज के समय में पत्रकारिता का क्या रूप है और आप क्या सोचते हैं आज के पत्रकारों के बारे में। ये सारी बातें होने वाली हैं आज के हमारे खास मेहमान जो कि अतुल शाह जी हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत कुछ जानेंगे। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम में हूं नाचीज हर दिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पहले लिंक में हमने आपको बातें बताई कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार पुनः बता देता हूं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि पत्रकारिता जगत में काफी लंबा चौड़ा अनुभव है, 20 से 25 साल आपने पत्रकारिता जगत को दिए।

0: आपका नाम है अतुल शाह जी और कहते हैं इनका इस्तकबाल करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि चार स्तंभ की बात होती है, पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है
1: न्यायपालिका
0: और चौथी है पत्रकारिता। ये छोटी सी आवाज आपने सुनी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल शाह जी। तो शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही रोचक यात्रा होगी।
0: बेशक बेशक सर, हमें बड़ी खुशी है आपसे बात करके खुद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं होने वाली हैं, आपके अनुभव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर, जब मैं अनुभव का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ तो पत्रकारिता जगत में आपने 25 साल, जैसे आपने हमें बताया 25 साल का जो अनुभव है वाकई बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये जो यात्रा अब तक रही है कैसी रही आपकी?
2: बहुत ही शानदार यात्रा रही है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने 1997 से दैनिक जागरण से अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया जो अनवरत 2021 तक जारी रहा।
0: सिर्फ एक संस्थान के साथ?
2: सिर्फ एक संस्थान के साथ जुड़ा रहा। और इसका एक खास कारण भी है कि बनारस में जो हमारे मुख्य संपादक हैं और दैनिक जागरण के निदेशक भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी, तो जब मैं अपने संस्थान में ब्यूरो चीफ था, मुझे किसी एक जगह पर एक पत्रकार की नियुक्ति करनी थी। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आई थी, उसमें एक एप्लीकेशन थी जो मुझे सबसे ज्यादा अपील कर रही थी और उन सज्जन ने 7-8 जगह काम किया था 10 सालों में। मैं बहुत ही उत्साहित होकर जब अपने निदेशक जी के पास गया और उनको बताया कि ये एप्लीकेशन आई है, किंतु मैं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और इन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने उस एप्लीकेशन को देखा और मुस्कुराए, बोले जब ये 7 जगह नहीं टिका तो तुम्हारे पास क्या टिकेगा।
0: जी।
2: तो मुझे समझ में आया टिकना भी जरूरी है, स्थायित्व से ही आपको जो है पहचान मिलती है। और निसंदेह हिंदी की पत्रकारिता में दैनिक जागरण नंबर 1 रहा है, तो उस मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि मैं किसी नंबर 2 अखबार में जाऊं। और मेरी बहुत ही मनमोहक यात्रा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी।
2: और समाज को जानने को मिला है और मैं बहुत खुशनसीब लोगों में से हूँ जो मैं कुछ लोगों के लिए कर भी पाया।
0: क्या बात है। सो ये एक छोटा सा परिचय हमारे जो खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पत्रकारिता जगत में 25 साल का अनुभव है और सबसे खास बात यह है कि एक संस्थान को ही इन्होंने 25 साल दिए हैं और संस्थान ने भी इनको बहुत कुछ दिया है। ये हम कह पा रहे हैं, इसलिए कह पा रहे हैं कि स्थायित्व यानी कि एक जगह लगकर जब आप काम करते हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, आपका एक नाम मार्केट में जाता है और लोग आपको जानते हैं, और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हाथों हाथ दिया जाता है, आपका स्वागत इस्तकबाल किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और जानेंगे हमारे खास मेहमान जो कि आज जर्नलिस्ट हैं अतुल शाह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, जर्नलिस्ट हैं आप है अतुल शाह जी, दैनिक जागरण के साथ आप 25 साल का आपका एसोसिएशन रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, यानी कि फ्रीलांसर काम करते हैं। और फ्रीलांस जब काम करते हैं तो क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, सम्मान कितना मिलता है, और फ्रीलांस की जब बात आती है और जो एक व्यक्ति एक संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहा है तो उसमें क्या अंतर है? सर, मेरा सवाल आपसे ये है,
1: जब आप किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारी प्रतिबद्धताएं भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी रहती हैं, और आपको उनकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करना होता है। जब मैं फ्रीलांस करता हूं तो फ्री लगा ही हुआ है, मैं स्वतंत्र हूं।
0: क्या बात
1: मेरी सोच, मेरी लेखनी, मेरी कलम सब स्वतंत्र है, मैं किसी भी विषय पर लिख सकता हूं। मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे लिखने से कहीं मेरे संस्थान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कि यह व्यावसायिक दौर है, सभी संस्थान को अपने व्यावसायिक हितों को भी साधना पड़ता है, लेकिन अब मेरे साथ वो सारी लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। और फिर भी जब आप किसी संस्थान से जुड़े होते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, और आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं। चूंकि अब हम 25 साल से जुड़े हुए हैं और इतना अनुभव है और छोटे से क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब मेरी खुद की पहचान है।
0: क्या बहुत खुश।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ काम किए हुए लोग और मेरे अंडर में काम किए हुए लोग आज सभी वहां के जितने भी नामी अखबार हैं उसके ब्यूरो चीफ हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है, या मेरे लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि मेरे साथ मेरे अंडर में काम किए लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं,
0: पहुंचे हुए। असर, आपने तो अपना अनुभव साझा किया। असर, हम समाज में ये भी देखते हैं कि लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, लेकिन उनकी पास्ट में कोई पहचान रही नहीं है, जिसकी वजह से उनको आगे तवज्जो नहीं मिल पाती, या यूं कहें कि वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मैं समझ सकता हूं आपसे बात कर कि सबसे पहले आप अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या अपना संस्थान खोलना चाहते हैं, तब जाकर आपकी मार्केट वैल्यू होती है। क्या कहना चाहेंगे?
1: निश्चित, लेकिन प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है, तो भले थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको आपकी पहचान अवश्य मिलेगी। आप संस्थान से अगर जुड़े होते हैं तो ये काम आपको थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक बड़ा बैनर मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और आप अपने आप करते हैं तो थोड़ा आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, बातों बातों में एक बात निकल कर यही सामने आई है कि टैलेंट यानी कि क्वालिटीज, प्रतिभा अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर दिक्कत परेशानियां आपके सामने जरूर आएंगी, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। वो प्रतिभा, वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर, ये हम जानेंगे जरूर सर से, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दैनिक जागरण में 25 साल तक जुड़े रहे, आप हैं अतुल शाह जी, बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो ये बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है अतुल शाह जी, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और दैनिक जागरण के साथ आपका एसोसिएशन 25 सालों का रहा है। तो इतने गुणीजन जब लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था, चूंकि सर ने जब बात रखी थी कि प्रतिभा क्वालिटी गुणों के बारे में बात हो रही थी, तो सर मैं यही जानना चाहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर वो कौन कौन सी प्रतिभाएं होनी चाहिए, वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि वो पत्रकार है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते।
1: सबसे पहले सब तो ईमानदारी आता है, जो पत्रकार में नहीं समाज के हर विधा हर अंग में होना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें, आईने की तरह एकदम स्पष्ट हों। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर के लिए चिकित्सक बहुत जरूरी होता है, उस तरह से समाज के लिए पत्रकार की भूमिका होती है। लेकिन हम धीरे धीरे मिशन से प्रोफेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं कि जैसे आज आपके पाठक को क्या चाहिए आप इस पे फोकस करते हैं
0: जी।
1: आप ये फोकस नहीं करते हैं कि उसे क्या चाहिए होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर से मरीज उम्मीद करता है कि उसे मीठी दवा दी जाए
0: जी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर जानता है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, इसे इंजेक्शन की जरूरत है, इसे कड़वी दवा की जरूरत है, तो वो देता है। तो आजकल हमको पत्रकारिता में भी देख रहे हैं कि लोग पाठकों की रुचि के अनुसार चीजें उनको परोस रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आज समाज को किस चीज की जरूरत है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे तभी समाज का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम समाज हित में क्या कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।
0: बहुत खूब सर, आपने जो बात कही वाकई बिल्कुल खरी बात है और सच बात है कि ईमानदार होना चाहिए। और किसी भी पेशे में अगर हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जो खुशबू है वो फिजाओं में चारों तरफ फैलती ही फैलती है। आज के समय में हम देखें, पत्रकारिता ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियां आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं कहानियां बन रही होती हैं। क्योंकि पत्रकारिता का विषय है और आप एक पत्रकार हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि पेड न्यूज की बात होती है, अगर हमें कुछ रुपया पैसा मिल गया तो हम खबर दबा देंगे, नहीं मिला तो शायद हम उस खबर को उछाल देंगे। ये मैं छोटे से लेकर बड़े बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूं, यहां हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना ही आप इस बात को यहां जिक्र करेंगे कि, लेकिन ये सच है कि इसके साथ ही मैं अगर दूसरी बात पर भी आता हूं कि अभी हम जो फ्रीलांस की बात कर रहे थे सर, चूंकि आपके पास तो अनुभव है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वो बारीकियां पता है, वो एथिक्स पता है, वो मान मर्यादा पता है। मैं एक 12th पास हूं या ग्रेजुएट हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई साहब की इनकम हो रही है, भाई साहब अगर किसी का रिपोर्टिंग कर आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो कुछ रुपए पैसे आ जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पत्रकारिता के क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी का अभाव है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मैंने इससे पहले भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि हम मिशन से प्रोफेशन के दौर में पहुंच चुके हैं।
0: ठीक है,
1: जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुषों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो उनका एक जरूर सोच रही थी और जरूर एक उद्देश्य रहा था कि हमें पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं
0: जी।
1: और सिर्फ उस समय के उद्देश्य था कि हमको समाज के हितों के लिए काम करना है। आज ये सारा बिजनेस ग्लैमराइज हो चुका है, उसमें बाजारवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है
0: जी।
1: आज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें सिर्फ
0: सेवा करनी है,
1: सेवा करनी है, उन्हें सिर्फ ऐश्वर्य और उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे इसीलिए आज पत्रकार सम्मान खोते जा रहे हैं,
0: खोते जा।
1: 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों के लिए इतना सम्मान होता था कि कोई भी आयोजन या कोई भी सभा या कोई भी कार्यक्रम तब तक शुरू नहीं होता था जब तक पत्रकार नहीं पहुंच जाते थे।
0: सही कहा।
1: और कहीं भी अगर किसी भी यूनियन और मालिकों में बात हो रही है तो वो यूनियन चाहती थी कि पहले पत्रकार हों, मजदूर और मालिक में बात हो रही है तो लोग चाहते थे कि नहीं पत्रकारों की उपस्थिति में हो। और आज उल्टा हो गया है, पत्रकारों को देखते ही लोग मारो मारो भगाओ भगाओ
0: जी जी
1: चिल्लाओ चिल्लाओ का दौर आ गया है कि ये जो है
0: हम सभी हैं,
1: इसके जिम्मेदार पूंजीवाद और बाजारवाद है। और जब से पत्रकारिता जो है संस्थागत हो गई है और इसको व्यवसाय बना लिया गया है और ये सेवी में रजिस्टर्ड होने लग गई है, तब से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। और जल्दी से इसका इलाज नहीं किया गया तो वो हम अपने सम्मान को खो देंगे जो हमें हमारे लोगों ने दिलाया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जल्दी से अगर इसका इलाज नहीं किया गया या ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को नहीं रोका गया तो पत्रकारिता क्षेत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और यही होगा आगे चलकर कि पत्रकार को शायद कोई तवज्जो ना दे जो तवज्जो पहले मिला करती थी, कोई उनसे बात ना करे क्योंकि उनको पता है कि उल्टी सीधी खबरें छप जाती हैं, जो खबरें छपनी चाहिए वो खबरें नहीं दिखाते लोग। और जब चैनलों की हम बात करते हैं तो वहां पर मार धाड़ हो रही होती है, चीख चिल्ला के लोग बात कर रहे होते हैं, एंकर भी वही चीख चिल्ला के बात कर रहे होते हैं। और जब कुछ और घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, एक अच्छी भूमिका होती है पत्रकार की, एक एंकर की, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, न कि आपस में वो मतभेद पैदा करे या मनभेद हो। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं, बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही हैं, क्योंकि पत्रकार का यही काम है कि वो बिंदास बात रखे, जमाने के सामने सच के साथ वो बातें हमारे सामने आए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शाह जी, जो कि 25 साल का अनुभव रहा है, दैनिक जागरण से आपका एसोसिएशन रहा है। बहुत सारी बातें हो रही है कि पत्रकार के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज के समय में जो पत्रकारिता है वो कितनी बदल गई, ये सारी बातें हम सर से जान रहे हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक पत्रकार के अंदर ईमानदारी के साथ वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकता है, समाज में एक जागरूकता ला सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास अनुभव नहीं है और ज्ञान नहीं है पत्रकारिता का, और जिसकी एक गलती की वजह से दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है। वर्तमान समय में हम ये भी देख रहे हैं, सरकार को हम यहाँ लाना नहीं भूलेंगे, कि सरकार ने शिकंजा भी कसा है। जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे?
1: आजादी की अभिव्यक्ति का हम लोग देख रहे हैं कि अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, जबकि इसकी सीमाएं बहुत पहले से निर्धारित है। और बचपन में मैंने किसी इंग्लिश लेखक की कविता पढ़ी थी और मुझे एग्जैक्ट उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें यह था कि आपकी आजादी का मतलब है कि आप अपनी छड़ी घुमाएं लेकिन वो किसी की नाक से न टकराए।
0: क्या बात है।
1: तो आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि अभिव्यक्ति आप उतनी ही स्वतंत्र हैं कि जिससे दूसरा कोई हर्ट न हो, आहत न हो, किसी का नुकसान न होता हो।
0: क्या बात, बहुत
1: खूब। और जो वर्तमान दौर में अभी पत्रकार बने हैं या आगे बनेंगे, उनके लिए मेरा एक ये संदेश है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या कहीं इंटरव्यू करने जाते हैं या रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो आपको पहले उसके बारे में पहले से स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप किस क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में है उसके बारे में अगर आप जान के जाएंगे तो आप उससे बेहतर सवाल कर सकेंगे और वो जो बता रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और जैसे हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था कि एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, उसी तरह से पत्रकार को भी जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है उससे उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए,
0: होनी चाहिए,
1: चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सामाजिक हो या वो राजनीति से संबंधित हो।
0: तभी बात करने में मजा आएगा,
1: तभी मजा आएगा। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं नया नया पत्रकार हुआ था तो हमारे यहाँ उस समय के केंद्रीय कारागार मंत्री का हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ था, हम भी उत्साहित थे और वो मंत्री जी भी नए नए बने थे, वो भी बहुत उत्साहित थे। मजेदार बातें हो रही थी। मैंने पूछा, मंत्री जी जब आपसे, आप कारागार मंत्री बने हैं तो आपने अपने कारागार के लिए क्या क्या किया है? वो बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेमेंडस चेंज किए हैं, हमने अब कैदियों की सुविधा के लिए टीवी लगवा दिया है, उनको खाना अच्छा मिलता है, उनको दाल मिलती है, उनको रोटी मिलती है, उनको घी मिलती है, उनको मैगजीन मिलती है, हमने कूलर की व्यवस्था भी की है और हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, हफ्ते में एक दिन वो टीवी भी देख सकते हैं। मैंने कहा, मंत्री जी आपने तो इतना अच्छा काम किया है और हम जेल के अंदर इतनी सुविधाएं हैं और बाहर तो लोग बिना खाए मर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम छोटा सा अपराध करें और जेल चले जाएं। मंत्री जी घबरा के बोले, भैया फंसाओ मत, मैं नया नया मंत्री बना।
0: उससे एक हास्य तो जरूर पैदा हो गया। क्योंकि आपने बाहर से ज्यादा सुख सुविधाएं अंदर दे रखी है।
1: तो भाई, आप छोटा सा क्राइम करके अंदर जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगे जो बाहर आपको उपलब्ध नहीं है।
0: तो इस बात का यही है कि सर, कि कहा भी जाता है, जो आपने एक वाक्य का यहाँ जिक्र किया, अक्सर हमने सुना भी है कि तोल मोल की बोलना चाहिए, कि क्योंकि जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो इस बात को अगर हम सब ध्यान रखेंगे कि तोल मोल कर बोलेंगे तो हमारी शब्दों की गरिमा बनी रहेगी, माहौल अच्छा बना रहेगा और पत्रकारिता की जो एक भूमिका है, या यूं कहें कि पत्रकार की जो एक भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों के ऊपर, सच्ची अच्छी बात रखे, अगर कोई बात कड़वी भी है तो बहुत सदे हुए शब्दों में रखे ताकि एक माहौल अच्छा बनकर रहे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पेशे से पत्रकार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल, मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम जो बात कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है, और पहले के समय के बारे में बातें की, आज के समय के बारे में बातें की। पहले का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 25 सालों का अनुभव है। हमारे जो खास मेहमान है, आप है अतुल शाह जी। 25 साल का जब अनुभव है, वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो उस समय क्या माहौल था, आज के समय में क्या माहौल है, और हमें किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर, जब किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि आपके साहबजादे शादा विश्वविद्यालय के बास्कॉम डिपार्टमेंट में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ फादर, आप एक पिता होने के नाते उनको क्या शिक्षा देते हैं, किन किन बारीकियों को आप बताते हैं, समझाते हैं?
1: ये मेरे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि मेरे पुत्र जहां अध्ययन कर रहे हैं, आज मुझे जो है साक्षात्कार देने का मौका मिला है। और उनकी रुचि थी पत्रकारिता में
0: जी,
1: है ना। मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैंने उसके इस आने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि वह स्वतः प्रेरित थे। उनकी मैं जब लिखने की शैली को देखता था तो मुझे लगता था कि उन्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। जबकि आज अधिकांश अभिभावकों का होता है कि वो उनका बेटा डॉक्टर बने
0: जी,
1: इंजीनियर बने या किसी और भी तरह जाए। लेकिन हम आज दौर बदल चुका है, हम अपने बच्चों को अपना कैरियर चुनने की पूरी आजादी दे सकते हैं और हमें देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं अपने बच्चे से यही उम्मीद करूंगा कि वो एक अच्छा नागरिक बने। अगर वो अच्छा नागरिक बनता है तो सारी खूबियां, सारी विशेषताएं उसके अंदर स्वतः आ जाएंगी। और उसे अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और सिर्फ पैसे के लिए अगर वो काम करना चाहेंगे तो उससे बेहतर है कि वो ना करें।
0: क्या बात है?
1: अगर हम समाज को कुछ दे सकते हैं तो यही हमारी उपलब्धि होगी। और मैं चाहता हूं कि मैं 25 साल के अनुभव को उनको जरूर जो है दूंगा कि वो जो है आगे बढ़ें और जरूर समाज को एक नई दिशा दें।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लिसनर्स, मैं समझता हूं कि यही संदेश जो अपने पुत्र को वो दे रहे हैं, हमारे खास मेहमान, हर एक बच्चे के लिए ये एक छोटा सा संदेश है सर की तरफ से, कि इन बातों को भी अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, अमल में लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और असल मायने में, क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो ये काम अच्छा करेंगे कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर रखें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इन बातों को सीखिए, समझिए और अमल में लेकर आइए, जिन बातों का जिक्र सर ने यहां किया है। तो सर, यहां पर वक्त हो चुका है आपसे अनुमति ले लेने का, और ये जो चर्चा रही वाकई बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला है आपसे। और बस यही कहूंगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप ऐसे ही अपने ज्ञान से हम सबको यूं ही रोशन करते रहें।
1: धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा लगा। और हमने पत्रकारिता में उस समय से आज तक का सफर तय किया है जब हमको किसी अपनी न्यूज को अपने सेंटर में भेजने में 2 दिन लगते थे और समाचार 3 दिन बाद प्रकाशित होते थे। फिर भी उनकी उस समय अच्छी भूमिका होती थी क्योंकि कुछ अच्छा लेसन मिलता था। आज जल्दी जल्दी का दौर है, त्वरित का दौर है, और ब्रेकिंग न्यूज का दौर है, और उसी कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही
0: हैं। क्या बात,
1: तो हमें जल्दी के चक्कर में जो है फायदे के चक्कर में कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए और समाज हित सर्वोपरि।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत खूबसूरत। आपके साथ ये चर्चा बहुत अच्छी रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिसनर्स इस चर्चा से लाभ जरूर उठाएंगे, और 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर कि ये विशेष वार्ता आपको कैसी लगी। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस वार्ता से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। खासकर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या इस फील्ड में भी नहीं है लेकिन इन बातों से तो जरूर आप सीख लेंगे कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। जाते जाते सर, कोई एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, सुनना सुनाना चाहते हैं, तो एक गाना हम आपके पसंद का अपने लिसनर्स को जरूर सुनाना चाहेंगे।
1: मैं चाहूंगा कि अजीब दास्तां है ये।
0: क्या बात है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। तो चलिए, वक्त है यहां पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, अनुमति ले लेने का। ये चर्चा कैसी रही बताइएगा जरूर। तो सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके, 13 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार, बोले तो थर्सडे का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज की तरह यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं को दिक्कत परेशानी ना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, विद मी मेरे यानी गगन के साथ। क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। टिल देन कीप लिसनिंग सुरु शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग। आए है क्या बात।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हम तो यही कहेंगे कि भैया पंगे पंगे मत लीजिए, खुश रहिए और अपने आसपास प्यार बांटते रहिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:12 हो चुके हैं, 13 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार का दिन। तो मौसम के जो मिजाज है वो क्या है उसके बारे में भी जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में आप और हम सब पाए जाते हैं, साथ ही साथ मैं आपको अपडेट दूंगा दिल्ली NCR की भी। तो ग्रेटर नोएडा में आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और हवा में हाई ह्यूमिडिटी के कारण यानी कि उमस की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी परेशान कर सकती है और ऐसे समय में लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी और साथ ही साथ वायरल तक की भी शिकायत हो रही है। और बारिश का जो पूर्वानुमान है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और दिल्ली NCR और नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। और जो अलर्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने एक वेदर सिस्टम की वजह से 14 अगस्त से दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा जिससे भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो खैर कुल मिलाकर बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ऑन रोड जब आप चल रहे हैं तो जहां जल भराव की स्थिति है वहां हमें गड्ढे नजर नहीं आते, तो अपने आप को बचा कर चलिएगा। साथ ही साथ बिजली के जो पोल हैं, जो खंबे हैं, वहां पर करंट उतरने की जो संभावना है वो भी रहती है और जिसकी वजह से जनधन हानि होती है। हम यही चाहते हैं कि कोई जनधन हानि ना हो, इसलिए अलर्ट यानी कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई दुर्घटना घटने से पहले हमारे पास क्या है यानी कि सावधानी, उसको हम अपनाते हुए आगे बढ़े। ब्रेक के उस पार कुछ और अपडेट्स हैं जैसे कि स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए कहां कहां फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है और जिसकी वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, कहां कहां रूट ब्लॉक हैं, कहां कहां डायवर्जन है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा आपको अप टू डेट रखता हूं खबरों के माध्यम से हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। जी हाँ, खास बात यह कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाएगा और उसी बात के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है और जिसकी वजह से रूट डायवर्जन किया गया है। तो लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कहां कहां आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, कमर्शियल जो व्हीकल है, जो बहुत बड़े बड़े जो वाहन है, रात में उनकी एंट्री रोक दी गई है। तो इस तरीके से कुछ अपडेट्स निकल कर ये सामने आ रही हैं कि लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं और इसका जो असर है दिल्ली ही नहीं बल्कि गाजियाबाद और एनसीआर के दूसरे इलाकों से आने जाने वाले लोगों पर भी दिखाई देने लगा है। और जो वैकल्पिक रास्ते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक लाल किले के आसपास की जो मेन सड़कें हैं आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी और इस दौरान केवल वैध रिहर्सल पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। और इन मार्गों पर सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा, जैसे कि नेताजी सुभाष मार्ग, लेथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और राजघाट से ISBT तक। और इसके अलावा इंडिया गेट, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड और BS ZED रोड और JL नेहरू मार्ग। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया कि अपना व्हीकल के जो डिजिटल डिजी लॉकर जो है ना उसमें कागज कंप्लीट होने चाहिए या फिजिकली अगर आपके पास वो कागज हैं तो भी आप देखकर आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए सुनो शारदा 90.8 FM हमेशा आपको अप टू डेट रखता है अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के माध्यम से। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, 9:28, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। हाय है, क्या बात है, सोलमेट का ब्यूटीफुल ट्रैक। 17 अक्टूबर 2025 को यह फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत ही खूबसूरत गाना, सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। इस गाने को आवाज दे रहे हैं समीर खान।

0: ओ हीरो, मिले बिना जाएगा?
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: प्यार करते रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सोचिए आप प्यार के माहौल में, बरसात के मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ कहीं बैठे हुए हैं और अचानक आपको पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से भाग दौड़ हो जाए, जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भूकंप आता है तो क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए। और जब मैं भूकंप का यानी कि अर्थक्वेक का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये कहाँ हुआ है। जी हाँ, 13 अगस्त 2026 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में 5.5 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। थैंक गॉड खबरें यहां तक की हैं कि जनधन हानि नहीं हुई। अपडेट ये हमें सामने आ रही है कि 6:05 पर सुबह ये झटके महसूस किए गए थे और सुबह 6:05 और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5.5 रिएक्टर पैमाने पर इसकी जो तीव्रता रही और जो केंद्र था, भूकंप का जो केंद्र था, जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे था। सोचिए नेचर कहां से कहां तक हिला सकती है। तो बस हम अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें और एक अच्छा उदाहरण पेश करें समाज में, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। कहते हैं ना कि प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, खुशनुमा माहौल रखिए, और जब आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत नहीं होने देगी। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ कि जब भूकंप आता है तो हम अपना बचाव कैसे करें, यानी कि फर्नीचर के नीचे आप बैठ जाएं और जो खतरनाक चीज़ें उनसे आप अपने आप को दूर रखें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, दरवाज़ों के पास आप बिल्कुल न खड़े हों, खुले मैदान में आप जा सकते हैं, इमारतों से आप दूर रहिए और गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाइए। तो कुल मिलाकर ये छोटी छोटी बातें, इनको नज़रअंदाज ना करिएगा। जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। खुल के जीने का दिल बेचारा फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज और साथ ही साथ शशा त्रिपुटी की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जय खान और जस्मीन अख्तर की आवाज में सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ उसका 44 मिनट हो चुके हैं, 13 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे होते हैं। सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रख लिया तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि अगर आपकी आय, अगर आपकी तनख्वाह, अगर आपकी सैलरी कम भी है, अगर आप बचत भी कर पा रहे हैं और आप हेल्दी हैं तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं। अगर आपके पास रुपयों का, कहते ना कि कोई सीमा नहीं है, रुपया बहुत ज्यादा है लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा निर्धन गरीब कोई नहीं होगा। ये बात दरअसल मैं इसलिए कर रहा हूं, समाज में हम ये देखते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, दाल वाला हूँ, आप दूध वाले हैं या कोई कुछ वाला है, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मिलावट का दौर है। हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, हम अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। त्योहार का मौसम है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो ऐसे समय में मिलावट का जो दौर है वो शायद अपने चरम पर भी होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो एक्सपर्ट हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम शुद्ध खाएं, शुद्ध वातावरण में रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और जब इस तरीके से ख्याल रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। बरसात का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि बात हो रही है, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए। अजय, माँ के नाम के अलावा बीवी की माँ के नाम भी एक पौधा लगाएगा वरना भाभी जी नाराज हो जाएंगी। हाँ, उनकी भी माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएगा वरना वो नाराज हो जाएंगी, और हम नहीं चाहते कि कोई नाराज हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है?
2: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग गई।

0: सांवरिया भूल चूक माफ फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: जगमग जगमग ज्योति जैसी छोरी, चांदी की कटोरी हुई रे मनमोहारी हुई।
0: राघव की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, तनिष बागजी का म्यूजिक, लेबल सोनी का
2: म्यूजिक होता है वैसे।
0: हाँ, मैंने मजाक में बोला था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ग्रेटर नोएडा में पाए जाते हैं तो हम अपने शहर की बात ना करें। हम बात करना चाहते हैं अपने शहर में क्या खास हो रहा है। जिम्स, यानी कि अब सुनने में आ रहा है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला ITBI सेंटर खोलने जा रहा है। दूसरी बात, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 अगस्त से जो चल रहा था मेला, यानी कि इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो, आज समाप्त होने जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर एक आंदोलन की तैयारी हो रही है, तो अगर आप वहां आसपास हैं या वहां से गुजर रहे हैं तो 14 अगस्त की ये बात की जा रही है, तो थोड़ा समझकर संभल कर निकलेगा ताकि आते जाते या यूं कहें कि आवन जावन में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई व्यवधान ना हो। हम चाहते हैं कि चारों तरफ अमन हो, सुकून हो, और अगर कोई बात रखनी है तो धीरे से प्यार से ज्ञापन देकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। और हम आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, सबके हित में हो। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अदरवाइज लोग तो ये कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। लेकिन अपन बोल रहे हैं टेंशन ना लेने का ना देने का, मस्त रहने का। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, और सुबह 10 बजे विशेष कार्यक्रम सुनना न भूलेगा जो कि सेहत से संबंधित होता है। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाना है, साथ मिलकर टीबी के भय को मिटाना है। हर घर गांव तभी होगा स्वस्थ जब टीबी का रोग होगा ध्वस्त। टेस्ट कराने में ना कोई शर्म ना लाज, क्योंकि टीबी का है इलाज। लक्षण पहचानो, टेस्ट करवाओ, नियमित रूप से ट्रीटमेंट करवाओ। अगर इलाज में होगी लापरवाही तो जान भी ले सकती है ये बीमारी। दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर 24 मार्च से 31 मार्च तक एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जहां पर हमारे रेडियो के प्रेजेंटर्स जमीन पर उतरकर अस्पताल जाते हैं और वहां पर टीबी से जुड़ी सारी जानकारियां आपके लिए जुटाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारी टीम, जिसमें गगन जी और दीपाली जी ने इस बार जेवर के राबूपुरा में जाकर डॉक्टर लेखराज सिंह एंड टीम से टीबी गोल्ड टेस्ट के बारे में बात की है और उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से टीबी लोगों के लिए कोई भय और भ्रम का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि सही टाइम पे जांच और सही टाइम पर अगर उसकी केयर की जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं डॉक्टर लेखराज सिंह और उनकी टीम से हमारी टीम ने क्या बातचीत की।
1: जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है, और कहा भी जाता है कि प्रथम सुख है निरोगी काया। और यही एक उद्देश्य को लेके सुनो शारदा 90.8 FM स्मार्ट के साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ रहा है। एक मुहिम चल रही है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। अब भारत सरकार की एक मुहिम है, टीबी को हराना है, देश को जिताना है। यही बात हम स्मार्ट के साथ जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि टीबी को हराना है, देश को जिताना है। विश्व का लक्ष्य है कि 2030 तक टीबी मुक्त हमें विश्व करना है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच यही है, हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। और इसी के अंतर्गत पूरे भारत में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हमारी सुनो शारदा 90.8 FM की टीम, मेरे साथ दीपाली जी हैं और SSMFE के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जेवर में, और यहाँ रबूपुरा एक जगह है और यहाँ एक अस्पताल है। अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं वो आज हमसे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर लेखराज जी। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए। जी बताइए
1: सर, आप अपना परिचय दीजिए। मुझे लगता है कि यही है या
2: मेरा नाम यही है बस, डॉक्टर लेखराज सिंह, और मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ एक साल से।
1: ठीक है सर, टीबी के विषय में हम बात कर रहे हैं, भारत बात कर रहा है इस विषय में, तो टीबी के संबंध में कुछ ऐसा आप मुझे बताएं कि जनरल बातें हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी लगातार अगर हो रही है या कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप अपना चेकअप कराएं, ये बात भी बहुत जरूरी है। तो इन बातों को आधार में रखते हुए कुछ ऐसी बातें जो हमारे श्रोता नहीं जानते वो जानना चाहते हैं।
2: वो बातें यही है कि अगर जैसे हम सब जानते हैं किसी को 2 हफ्ते से खांसी और बुखार है वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में अगर आज के समय में जरूरी है एक टीबी गोल्ड टेस्ट, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम उसको कराते तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा टीबी है, पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। बट ये तो हर किसी के साथ आजकल वायरल है, तो उसको भी 2 हफ्ते से खांसी रहेगी, बुखार रहेगी, लेकिन एडिशनल टीबी में जो रहेगा हमें उसका चेस्ट एक्सरे चाहिए या HRCT थोरेक्स उसका हो, तो हम कंफर्म कर सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं कि टीबी है या नहीं। और तीसरा, अगर उसका वेट लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली तो बाकी उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं फिर पेशेंट को कि हमारा पेशेंट कैसा।

0: तो हमारे पास करंटली पेशेंट आते ही रहते हैं टीपी के, जिनका हम डॉट्स प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, और भी एडिशनल उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं, एडिशनल ट्रीटमेंट उनको देते हैं। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया तो हम उसकी ओर अग्रसर हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम किसी तरीके से टीबी मुक्त भारत करें।
1: राजेंद्र जी, आपने फील्ड में काम किया जैसे कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं, तो सबसे पहले सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद कि आप हमें समय दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जब फील्ड में आप जाते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस आपके सामने रहता है, लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं या नहीं आते, अपनी बीमारी को छुपाते हैं, छुपाते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं?
2: पेशेंट वैसे बढ़ चढ़ के आते ही हैं, लेकिन कुछ को पेशेंटों को मोटिवेट भी करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मेन इसमें वजह ये है कि आदमी को थोड़ा अज्ञानतावश रह जाता है और अपनी ये बीमारी छुआछूत की समझते हैं, तो ये एक छोटा कारण है। हालांकि हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, माया स्पोटम कप एवं टूनेट सुविधा उपलब्ध है, सारे पेशेंटों को स्क्रीनिंग की जाती है, डॉक्टर साहब का हमारे लिए जो MYC हैं उनका सरकार अद्वितीय सहयोग है, वो प्रोग्राम अग्रसर चल रहा है।
1: उन लोगों के बारे में बताइए जिनको भ्रम है, अफवाह एक ये रहती है कि छुआछूत की बीमारी है, तो उस भ्रम को कैसे तोड़ते हैं कि ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, आप अपना इलाज कराएं, समय से इलाज कराएंगे तो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, या इस तरीके जब लोग आते हैं तो किस तरीके से उस समस्या से आप लोग उनको निजात दिलाते हैं?
2: सबसे पहले तो क्या है, बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं, और जानकारी के बचाव, जानकारी के साथ साथ समय समय पर अगर अंदेशा होता है तो जाँच एवं क्या है चिकित्सक की देखरेख में परामर्श लेना अति आवश्यक है।
1: अच्छा, चलिए ये तो रही एक बात परामर्श की। अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि चूंकि आप जाते हैं फील्ड में, लोग एक बार दवा स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने दवा को, उस ट्रीटमेंट को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: उन लोगों से क्या समय समय पर संपर्क किया जाता है और उनको यही सलाह दी जाती है कि दवा अगर कोई भी वजह हो उसको बताएं, उसका संभवतः वर्षक प्रयास किया जाता है। दवा किसी भी कीमत में छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंटों का जन्म होता है,
1: जिसे MDR कहते हैं।
0: एक पॉइंट और
1: जी,
0: दरअसल क्या है कि जो भ्रामक है ना, एक जो अज्ञानता तो है ही, जागरूकता की कमी है, लेकिन सबसे एक जरूरी पॉइंट है ये हमारा कम्युनिटी का पॉइंट है। यहाँ पे जो है जितनी कम्युनिटी है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें लोगों के अंदर क्या है कि उनको नॉलेज नहीं है, इलिटरेट है वो, तो उनका ये रहता है कि नहीं टीबी कोई बीमारी नहीं है, वो समझते हैं सिर्फ एक मौसमी बीमारी है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन टीबी के साथ सबसे ज्यादा अगर बहुत कॉमन है तो वो एड्स है। अगर पेशेंट को टीबी है देन इट इज 99% चांस दैट ही विल गेट एड्स,
1: बिकॉज लो इम्यूनिटी। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, किसी को टीबी है तो वो कन्वर्ट एड्स में हो सकता है,
0: कन्वर्ट नहीं एसोसिएट हो सकता है उसके साथ, बिकॉज लो इम्यूनिटी की वजह से। अगर लो
1: इम्यूनिटी,
0: बिकॉज मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है पेशेंट और लो इम्यूनिटी, और अगर वो कोई STD के कॉन्टेक्ट में आ रहा है या अनप्रोटेक्टेड कोई किसी तरह का कार्य कर रहा है, तो देन ही इज अ वेरी हाई चांस टू गेट एट एड्स।
1: मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए हूं क्योंकि मेरे एक मित्र की डेथ इस तरीके से हुई, जैसे HIV का आपने जिक्र किया।
0: उसमें क्या है ना कि जैसे आपने बताया, तो उसमें क्या है कि रेगुलर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि छोड़ देंगे ट्रीटमेंट, तो फिर उसमें क्या इन्फेक्शन आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा।
1: यही हमारा सुनो शारदा 90.8 FM काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, अवेयर कर रहा है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा का अभाव है, लोग अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से इस बीमारी को,
0: लेकिन अवेयर होने के बावजूद भी उनके मन में एक पता संदेश यह है कि अगर हम किसी को बताएंगे तो हमसे जैसे छुआछूत आपने बोला, हालांकि आजकल सब मॉडर्नाइज्ड है, एवरीवन इज एजुकेटेड, सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी हम लोग ना मेंटली उस चीज को काउंसिल कराते हैं, इसलिए काउंसिल करते हैं उनको कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि टीबी आप जानते हैं कि एयर ड्रॉप इन्फेक्शन, अगर किसी के पास में छींक रहा हूं या इसमें जा रहा है मेरा ड्रॉपलेट, तो सीधे उसको होना ही होना है, हाईली कॉन्टेगुअस है, हाईली स्प्रेडजनस है, और अगर पल्मोनरी है तो देन डेफिनेटली, एक बार को अगर आपके पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, आइदर पॉट स्पाइन जिसको हम टीबी ऑफ स्पाइन कहते हैं, या न्यूरोलॉजिकल टीबी जो ब्रेन की टीबी होती है, तो उसमें आपके पास चांसेस हैं सर्वाइव करने के। बट अगर आपको पल्मोनरी टीबी है देन यू आर प्रोन टू द हाई इन्फेक्शन एंड यू कैन कॉज टीबी टू अदर पेशेंट्स ऑल्सो, जिनका इम्यूनिटी अगर लो है, या जो आपके साथ में बैठे हैं और उनको जानकारी नहीं क्योंकि आपने उनको नहीं बताया कि आपको टीबी है।
1: जी जी,
0: दैट इज अ बिग रीजन, मास्क कोई लगाता नहीं है,
3: मेन है प्रोटेक्शन।
1: सर आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम राजीव कुमार शाक्या है और मैं चीफ फार्मासिस्ट के पद पे PSC रघुपुरा पे तैनात हूँ, और लास्ट 14 साल से मैं इस महकमे में हूँ।
1: तो आप यहीं पर पोस्टेड हैं?
3: हाँ, मैं यहीं पोस्टेड।
1: कैसा अनुभव रहता है टीबी पेशेंट के बीच में, जब उठते बैठते हैं, जब उनको जज करते हैं?
3: हाँ, जब जज करते हैं, टीबी पेशेंट का जजमेंट आ जाता है, जैसे ही वो घुसता है तो उसका जजमेंट आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि इसका हमें ये कराना चाहिए।
1: खांसी
3: खांसी है, वेट लॉस है,

0: और शाम के टाइम पे अक्सर क्या होता है, कहता जो हमारा गांव एरिया है, ग्रामीण एरिया है ना, उसमें वो लोकल लैंग्वेज में कि हमें बॉडी एक हो रहा है, वो मतलब दर्द हो रहा है,
1: आधार पे आप समझ
0: हाँ, हाँ,
1: जी,
0: तो उसके आधार पे समझ के मैं उसको ना एक स्पूटम टेस्ट तो कराना ही कराना है, अगर नहीं उसमें आ रहा है तो देन वी विल रेफर टू दिस चेस्ट एक्सरे। और सबसे ज्यादा उसको ना अवेयर करना बहुत जरूरी है कि घर में अब जैसे माँ को टीबी है तो बच्चे को कैसे अपना स्तनपान कराए, कैसे हाँ
1: जी,
0: और
1: जी,
0: क्या करा है, इस चीज का हम अवेयरनेस पेशेंट को देते हैं, काउंसिल करते हैं उसको, क्योंकि वो अपना मास्क लगाए है उसके बाद उसको स्तनपान करा के और उसके हिसाब से
1: आइसोलेशन में रहे।
0: यस यस, और सबसे सर महत्वपूर्ण बात करूंगा कि इसमें ना मेडिसिन का राइट डोज जो है ना वो बहुत जरूरी है,
1: राइट टाइम पर, मेरी
0: राइट टाइम पे राइट डोज,
2: कांट मिस द सिंगल डोज, हां सिंगल डोज, देन योर ट्रीटमेंट हैज टू बी स्टार्टेड
0: डोज फ्रॉम द न्यू डोज शुड बी अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट।
1: अच्छा, ये हमने सुना है, डॉक्टर साहब यही बताते हैं,
0: डोज शुड बी अकॉर्डिंग द बॉडी वेट,
1: वजन के हिसाब से ही दवा आपको लेनी होगी और सही समय पे लेनी होगी,
0: सही समय पे लेनी।
1: जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एमडीआर रूप इख्तियार कर लेती है अगर आपने दवा सही समय पर नहीं ली, तो क्या क्या और दिक्कतें परेशानियां हो सकती है?
0: एमडीआर जब होती है, अभी पेशेंट आया हमारे पास, उसने 2 महीने दवाई ली और उसके बाद कहता मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर उसके बाद बेटर फील हो रहा है, वो ड्रॉप कर देता है बीच में दवाई को, तो फिर वह क्या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। तो इस प्रकार के पेशेंट को ये एमडीआर होता है, नहीं तो अगर पूरी दवाई खाए ना तो 100% ठीक हो जाए।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर लेवल की अगर मैं बात करूं कि जैसे साधारण तौर पर आपने हमें बताया कि छाती की टीबी या और भी प्रकार की टीबी होती है, तो क्या क्या गंभीर परिणाम आ सकते हैं एक टीबी पेशेंट की जिंदगी में?
3: गंभीर परिणाम सबसे जरूरी क्या है, एक तो मेंटली वो आइसोलेट हो गया सबसे पहले, दूसरा क्या है कि हमें उसको सपोर्ट देना है, बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कोई टीबी पेशेंट अलोन है या उसके परिवार में कोई नहीं है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर गंभीर परिणाम है कि अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला देन ही विल सफर सीवियर वेट लॉस, वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और साथ में मेंटली ब्रेकडाउन तो है ही, और उसके साथ में मेनली क्या होता है लीवर पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। अगर आप टीबी आपको है और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमें लीवर का और किडनी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसने नहीं इन चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली ही विल सफर सीवियर।
1: अच्छा, जो घर वाले हैं ऐसे समय में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने फैमिली मेंबर को, जो पेशेंट है उसको,
3: परिवार के लिए, अगर किसी परिवार में कोई टीबी ग्रस्त मरीज है तो सबसे पहले वो घबराए नहीं, अपने नजदीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं। अगर हल्के से भी लक्षण उनको आ रहे हैं, या सांस फूल रहा है, या बुखार है, या छाती में दर्द है, या खांसी है, या नज़ला जुकाम जैसा भी कई बार हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कई बार एक लिटिल इन्फेक्शन से भी हमें पता लग जाता है कई बार कि टीबी हमें है। अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री है, इट विल डिपेंड ऑन द हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री ले रहे हैं पेशेंट की फैमिली में किसको है, उसके चाचा है, ताऊ, उसकी मम्मी को, या उसकी सास फादर को, या फादर इन लॉ को, अगर किसी को रही है तो
1: इस बात को जो पेशेंट है वो खुल के बात कर पाते हैं या संकोच रहता है?
3: समटाइम्स मतलब वो खुल के आते हैं, समटाइम्स नहीं आते। जैसे मैंने बोला कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और टीबी आप जानते हैं कम्युनिटी डिजीज है, तो एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, माइक से संदेश भी भिजवाते हैं, ऐलान भी कराते हैं मस्जिदों में भी,
1: और देखिए हमारा वीडियो भी काम कर रहा है।
3: जी
0: यस यस,
3: नहीं आपका जो माध्यम है वो तो सबसे बड़ा माध्यम है एक तरीके से, क्योंकि आरजी रेडियो जो कि हम सुनते हैं 93.5 बहुत सारे हैं,
1: जी जी,
3: और 90.8 भी कुछ समय से काम कर रहा है, तो आपका काम सराहनीय है। क्योंकि क्या है कि आजकल क्या है सब डिजिटलाइज हो गया है, एक जमाना था जब पहले सब FM के जरिए ही बैठा करते थे,
1: आकाशवाणी हुआ करता
3: जी, उसी पे अपना टोन करते थे और उसी पे सुनते थे, तो वो जरूरी है मेरे हिसाब से।
1: राइट सर, सर मैं सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहूंगा, नो डाउट सरकार इसका फ्री इलाज करती है, जैसे सर ने बताया कि अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाती है, और क्या क्या है
0: मतलब आपका जितने भी टीवी का टेस्ट है सब फ्री है, उसके साथ में सारी दवाइयाँ फ्री हैं, और उसका जो पोषण सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, जो पोषण भी देते हैं टीवी पेशेंट को, वो भी फ्री है एब्सोल्युटली, और उसके साथ साथ में इनके अकाउंट में जो टीवी पेशेंट है पैसे भी आते हैं, ये सरकार पैसे भी देती है,
1: प्रोत्साहन राशि है, जैसे
2: ट्रीटमेंट पूरा कराएं।
1: इसमें कहीं कोई दुविधा तो नहीं आती, जैसे मुझे पता चला है कि पहले 500 रुपए थे अब 1000 रुपए हो गए,
2: तो ये लगा आपको ये बताएंगे, क्योंकि ये
1: दुविधा बताइए सर,
4: दुविधा इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये 1 नवंबर से 1000 रुपए प्रति माह पेशेंट के लिए किया गया है, वो गवर्नमेंट का प्लान है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
1: अच्छा, निक्षय मित्र भी एक योजना है, उसके बारे में बताइए।
4: वो सर इसमें हमारे ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, उनको ज्यादा डीपली नॉलेज है।
1: अच्छा, वो आज अनुपस्थित है, क्षेत्र में गए
3: और उसी के अकॉर्डिंग उसको सब कुछ देखना होता है, उसको सारी डोज, उसको सब कुछ पता है ऐप के थ्रू अगर वो एजुकेटेड है तो। और अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो उसको हम हिंदी में ऐप डाउनलोड कराकर बताते हैं और उसे समझाते हैं किस तरीके से उसको संचालित करना है, क्योंकि आजकल हर घर में सबके पास मोबाइल है और हर घर में ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं उसे।
1: कोई एक बात जो आपको लग रहा है कि गगन ये बात छूट रही है, ये बात मैं बताना चाहता हूं,
3: हमारा स्पेशल किसने, हम यही बताना चाहेंगे कि कोई भी इस बीमारी को लेकर घबराए नहीं, क्योंकि जैसे हमारी भारत सरकार इसकी तरफ अग्रसर है और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि टीबी मुक्त भारत हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, बहुत ही पुराने समय से, जैसे हमने पोलियो को भी जड़ से उखाड़ फेंका है, एक समय पोलियो में हमारा देश सबसे पीछे था, आज हमारे पास जीरो पेशेंट है पोलियो का
1: जी।
3: तो ऐसे टीबी के लिए भी क्या है कि बस थोड़ा सा प्रोत्साहन करना है और पेशेंट को मेंटली ब्रेकडाउन नहीं होना है, वो कहीं पर भी अगर किसी भी जगह पर जा रहा है, सरकार ने हर अस्पताल में सुविधा दी है सरकारी अस्पतालों में, और अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप प्राइवेट में भी जाके जांच करा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
3: अगर आप सोच रहे हैं सरकारी में, कई बार ऐसा होता है पेशेंट के मन में कि नहीं मैं सरकारी में जाऊंगा तो मुझे उचित लाभ नहीं मिलेगा, तो सरकार ने प्राइवेट में भी सुविधा दी है, वहां भी आप जाके जांच करा सकते हैं। संदेश ये कि अपना एक भी डोज ना छोड़ें और समय समय पर 15-15 दिन पर आकर अपने अस्पताल पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएं। जैसा कि जनरली क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के एक महीने के बाद कमजोरी आना, उल्टियां आना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ये हल्की सी शिकायतें आती हैं मरीजों को, तो उन सभी का समाधान के लिए हम 24 घंटे कार्यरत हैं इस केंद्र पर और हम हमेशा आश्वासन देते हैं कि उनको पूरा इलाज मुहैया कराया जाएगा हमारे केंद्र पर।
0: और इसीलिए जी एक बार जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी टीबी पेशेंट जिसके भी घर में हैं, आसपास है ना, उनको नजरअंदाज मत किया जाए, उनको सपोर्ट करें विद प्रोटेक्शन।
3: ये एक बॉम्ब तरीके का है, हम एक बॉम्ब पे बैठे हैं इस तरीके से समझिए। जैसे कोरोना बीच में भी आया था 2021 में, तो सभी लोगों ने उसके बीच में, सब लोग दहशत में आ गए थे, तो टीबी का भी क्या है, सिम्टम्स अलग है लेकिन है रेस्पिरेटरी इलनेस, ये भी जैसे कोरोना रेस्पिरेटरी इलनेस था सार्स को भी, इसमें क्या, उसमें जल्दी इंसान को पता चल रहा था और जल्दी उसमें मौत हो, इसमें क्या, ये लेट डिजीज है बट यू विल डाई फॉर्चुनेटली इफ यू विल नॉट गेट द ट्रीटमेंट करेक्टली।
1: सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है और मरीज को सौतेला व्यवहार ना करें।
3: अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं अंटिल इलनेस यू विल गॉट सीवियर।
1: अब बिल्कुल आपने सही कहा कि सर, अदरवाइज अगर आपने लापरवाही बरती, कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, आपका मरीज
3: है ना, किसी भी चीज के लिए अगर हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, मतलब क्या करना कि हमें जैसे स्प्रे कराते हैं हम, उसके बाद में अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक यही है प्रिवेंशन, यही रोकथाम, मास्क वियर कर रहा है। अगर किसी कम्युनिटी में कोई पेशेंट निकलना है तो हमको बताएं, उस कम्युनिटी के लोग, जैसे उस कम्युनिटी में प्रधान है या कोई मस्जिद में है या कोई इमाम साहब है या कोई मान्य व्यक्ति जो भी होते हैं, वो अगर आकर हमें बताएं तो फिर हम उस जगह सर्वे करें, हमारी टीम जाती है सर्वे करने के लिए समय समय पर, तो अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव आता मिलता है तो फिर हम पूरे इलाके की जाँच कराते हैं फिर,
1: जी जी,
3: ताकि उस क्षेत्र में कोई रह ना जाए।
1: ठीक है,
3: बाकी सरकार ने 1 जनवरी से शुरू भी किया है प्रोग्राम, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है, जैसे ही हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी आएगी तो उसी प्रकार से फिर हम आगे कार्यवाही करते रहेंगे उसके अंदर।
1: लगभग अगर फाइनली मैं जानूं तो कितने मरीज अब तक आ चुके हैं और
3: मरीज हमारे पास ऑन एन एवरेज, नहीं इस बारे में डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे डेटा काम नहीं है।
4: डेटा किस तरीके से चाह रहे हो, 1 जनवरी से?
1: हाँ, 1 जनवरी से, जैसे
4: 1 जनवरी से अभी तक मेरे पास 100 डे का प्रोग्राम है, अभी डायग्नोसिस बतौर अभी तो 2 ही पेशेंट,
1: मतलब कुल मिला के यहाँ पेशेंट मिल भी रहे हैं और ठीक भी हो रहे
4: हैं, निकलते हैं, मिलते भी हैं, पूरा ट्रीटमेंट होता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी नया डेटा है ये, अभी 100 डे से
1: टीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने हमें सर बहुत समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें विस्तार से बताई और इस बात के लिए दिल की गहराइयों से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और नो डाउट कि जब इस तरीके से धरातल पर काम हो रहा है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो मरीज भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच, 98.2,
3: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर,
1: थैंक यू,
3: आपने अपना समय दिया, ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है।
5: सोनू के घर पे चाय के कप से ज्यादा इनाम में जीते हुए कप है, घर का हर एक कोना गवाह है उसकी काबिलियत का, उसके जुनून का, और शायद उसके इरादों पर लगने वाली उस धूल का। क्योंकि सोनू के पिताजी को टीबी है, न जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं टीबी की वजह से। टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके, जरूरत है इसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: कोई भी हारेगा, देश जीतेगा।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: तो आइए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मुहिम के तहत, जो एक जानलेवा टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सुनो शारदा रेडियो स्मार्ट के माध्यम से सभी देशवासियों को एक उपदेश रागनी के द्वारा सुनाते हैं, जिसके गायक कलाकार किरसन कुमार फरीदाबाद हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं नेपाल सिंह शर्मा जी, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं मनोज शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश।

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे टीवी जन जागरूकता पर ये उपदेश। गायक कलाकार थे कृष्ण कुमार और संगत कलाकार थे हारमोनियम पर नेपाल सिंह शर्मा और ढोलक पर साथ दे रहे थे मनोज कुमार शर्मा जी। तो गायक कलाकार कृष्ण कुमार और उनके संगत साथियों को उपदेश गायन के माध्यम से टीबी जन जागरूकता फैलाने के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, तो सुनते रहिए।
1: तो दोस्तों, आपने सुना हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां पर हमारे साथी गगन जी और दीपाली जी ने डॉक्टर लेखराज सिंह और उनकी टीम से टीबी गोल्ड टेस्ट के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं और वो कैसे एक टीबी के पेशेंट को बचाने में मददगार हो सकता है और कैसे भ्रम की जो बातें समाज में फैलाकर टीबी से आपको मौत के करीब पहुंचाने वाली जो भ्रामक चीजें हैं उन्हें दूर करके सब कुछ आपके सामने परत दर परत हमारी टीम ने रख दिया। तो कैसा लगा ये एपिसोड हमें 01204060205 पर कॉल करके बताएं। और वही अगर आप हमें अपने कोई सुझाव रखना चाहें या कोई सवाल आपके जहन में हो तो 90.8 FM @sharda.ac.in पर हमें अपनी राय लिखना ना भूलें। शुक्रिया।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
3: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके

0: इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अभियान।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts. Anyway.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे हर्बल पौधों की खेती के बारे में और साथ ही साथ आज के समय में जो सिंचाई करने की आधुनिक नई तकनीकी जो आई है उन तकनीकियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ लोक संगीत के माध्यम से यानी कि उपदेश रागनी के माध्यम से आपका मनोरंजन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बल पौधों की खेती के बारे में। किसान मित्रों, अगर आप कम लागत में अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो परंपरागत खेती की जगह हर्बल पौधों की खेती कर सकते हैं। जड़ी बूटी और औषधीय पौधों को उगाना और उनकी देखभाल करना ही हर्बल खेती है। हर्बल पौधों में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इन पौधों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे देश में कई औषधीय पौधे काफी मशहूर हैं जो आप भी जानते होंगे। इनमें अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर का नाम प्रमुख है। किसान मित्रों, बदलते दौर में औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण किसानों के लिए भी इनकी खेती का अवसर तैयार हो गया है, इसीलिए किसान भाई हर्बल पौधों की खेती को अपनी कमाई का एक अच्छा जरिया बना सकते हैं। किसान मित्रों, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वर्तमान में औषधीय पौधों के सतत विकास, प्रबंधन और संरक्षण में पूरे देश में काम कर रहा है। इसके तहत किसान मित्रों को कई तरह की सहायता दी जा रही है, जिसमें किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाई की स्थापना करना, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना तैयार करना शामिल है। किसान मित्रों, एक आकलन के मुताबिक देश में

कम लागत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही हर्बल पौधों की खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं तरुण वाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप तरुण बाल्यान से ये देशभक्ति रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, पानी हमारे जीवन के साथ साथ खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि में पानी का उपयोग व्यापक स्तर पर फसलों की बुआई से लेकर उसकी कटाई से पहले तक, सिंचाई, कीटनाशक छिड़काव और बीज तैयार करने में किया जाता है। लेकिन सिंचाई में सबसे अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी पौधों के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं के संचालन में आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि में लगभग 80% भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। अगर भूमिगत जल का इसी दर से दोहन होता रहा तो यह एक सूखे जैसी भयानक स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे हमारा जनजीवन और कृषि दोनों ही बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सिंचाई की नई तकनीकियां ईजाद की गई हैं, जो पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाते हुए फसल की पैदावार भी बढ़ाती हैं, और इन तकनीकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। तो किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं पूजा शर्मा।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये देशभक्ति रागनी। और अब किसान मित्रों बात करते हैं कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की नई तकनीकों में बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई विधि प्रमुख है। इनमें बूंद बूंद सिंचाई विधि प्रमुख रूप से बागवानी, सब्जियों और पंक्ति में बोई गई फसलों में अपनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा किसान अपने खेत में पानी के उपयोग को बहुत हद तक कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि में पानी के उपयोग की दक्षता 90-95% तक मानी गई है और इस विधि द्वारा किसान भाई सतह और उपसतह दोनों तरीकों से फसल में सिंचाई कर सकते हैं। ये विधि पानी को पौधों की जड़ पर बूंद बूंद करके पानी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार फव्वारा विधि में फसलों को कृत्रिम विधि के पानी के प्रयोग की दक्षता 80-85% तक मानी जाती है। ये विधि किसी भी प्रकार की फसलों में अपनाई जा सकती है, जैसे बागवानी, दलहन, तिलहन, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का। किसान मित्रों, यहाँ पर एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों विधियाँ फसलों में लगने वाले कीटनाशक और घास नाशक को मारने वाली दवाइयों के प्रयोग को लगभग 30% तक कम कर देती हैं और फसलों की पैदावार को 20% तक बढ़ा देती हैं। तो आप भी कृषि में आधुनिक सिंचाई की जो नई विधियां हैं उनका उपयोग करें ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे और खेती में लागत कम आए और आपको फायदा ज्यादा हो। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। और देखिए, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: प्रेमी सज्जन साहबानों, अस्पताल में लड़की स्वस्थ होती चली।

दी गई, लेकिन जिन लोगों ने पैसे के बल से अपने केस को बरी करा लिया, आज उन जालिम दुष्टों का आप हाल सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे।

सब जानते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है और अच्छे कर्म की नैया पार होती है। भले ही अदालत में इंसाफ नहीं हो पाया दोस्तों, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं साथी होता है उसका तो परमपिता परमात्मा ही हिमाती होता है। अदालत में सजा

लड़की थी, उर्मिला की ननद, उसको इसी तरह से जलाया गया ससुराल में जैसे उर्मिला को जलाया गया था। मेहरबानों, पति के शरीर में कोल हो जाते हैं, सासू मौत के घाट उतर जाती है।

0: बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं भगवान, मेहरबानो कैसे पश्चाताप कर रहे हैं। साथियों, धर्म की विजय होती है। ये प्रोग्राम दहेज की आग यहीं पर समापन किया जा रहा है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

प्रेमी सजनों, आप सभी जानते हैं चले हुए शरीर में इतनी जलन होती है कि जिसे आदमी

पायल की आवाज में इशारे से दरोगा को अपने पास बुलाती है। दरोगा जी, जब तुम मुझे अपनी धर्म की बेटी मान चुके हो तो मेरा हिमाती अब इस समय दूसरा संसार में नहीं।

और भाई को रामगढ़ी से बुलवा दो। प्रेमी दोस्तों, तसल्ली दिलाता है दरोगा बेटी उर्मिला, राम और घनश्याम पर क्या ये विपत आई नहीं, राम और घनश्याम पर क्या ये विपत आई नहीं, कौन है जिस पर कि ये काली घटा छाई नहीं। धीरज धराता है लेकिन उर्मिला के मन में कहां चैन था। मेहरबानों एकदम से कह उठी, दरोगा जी मेरी बात सुनो। और किस तरह से

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ। सुनो शारदा 90.8 एफएम आपसे यही उम्मीद करता है, यही आपसे कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और यही एक वजह है कि महिलाओं से जग है और महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, अच्छी तरीके से निभाती भी है। सोचिए, कल्पना करिए कि अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है जो व्यवस्थाएं वो निभा सकती हैं, वो शायद आप और मैं नहीं निभा पाऊंगा। तो इसीलिए हर एक दुख को, दर्द को सहते हुए वो आगे बढ़ती है। और अगर उनको कहीं कोई दुख है तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम उनसे बात करें, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करें। और यही एक काम भारत सरकार करती है उनके अधिकारों को बताकर, उनके अधिकारों को हम सबके सामने लाकर। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कानूनी अधिकार के विषय में। पहले दो भागों में हमने कानूनी अधिकार के विषय में बात की, तो उसी के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ कोई हिंसा ना हो, हम उनका ख्याल रखें हर तरीके से, भावनात्मक तौर पर उनसे बात कर। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो हम उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। तो महिलाओं के प्रति हिंसा के विषय में बात सामने आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से रूप हैं जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा में शामिल हैं। जैसे पत्नी से मारपीट, बालिकाओं से यौन दुर्व्यवहार, दहेज से संबंधित समस्याएं, बलात्कार एवं वैवाहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अनैतिक व्यापार। अब बात करते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा के विषय में। महिलाओं पर हिंसा का अभिप्राय जेंडर के कारण महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष हानिकारक व्यवहार हैं। विषय ये है, एक हेडिंग कहें, लिंग चयन आधारित गर्भपात। ये एक हिंसा का प्रकार है। गर्भ धारण के समय या उसके बाद किसी भी कृत्रिम तरीके से बच्चे के लिंग का पता लगाने की प्रक्रिया लिंग चयन की क्रिया है। जेंडर आधारित लिंग चयन गर्भपात महिलाओं पर हिंसा का एक चरम रूप है। नवजात बालिकाओं को जानबूझकर मार देना बालिका शिशु हत्या कहलाता है। लिंग आधारित गर्भपात के कारण वो कौन कौन से हैं? विशेषज्ञ बताते हैं कि बेटों को वरीयता देना, बेटे परिवार की विरासत और वंश बढ़ाते हैं ऐसी धारणा, महिलाओं की अधीन स्थिति, दहेज जैसी कुप्रथाएं, ये सब सामाजिक कारण। आर्थिक कारण में बात सामने आती है। लिंग आधारित गर्भपात के कारण में आर्थिक कारण की जो बात है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चे के पालन पोषण पर होने वाला खर्च, विवाह पर होने वाला खर्च, राजनीतिक कारण। ये लिंग आधारित गर्भपात के कारण में एक बात सामने आती है, तो वो बात निकल कर यही है कि कानूनों का कार्यान्वयन कारगर ढंग से न होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, छोटे परिवार की नीति, कैंट और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने यही आती है कि लिंग चयन आधारित गर्भपात के खिलाफ कानूनी प्रावधान है या नहीं। अगर है तो वो क्या है? चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 यानी कि 1971, और वही 2002 में इसमें संशोधन किया गया है। गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें, लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 यानी कि 1994 अधिनियम एक है और इसमें संशोधन 2003 में किया गया। बाल विवाह, इसके अंतर्गत बात ये सामने आती है कि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया। भारत में कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कों के विवाह के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। भारत में इससे कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध है और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। अब बाल विवाह के कारण भी हो सकते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से ये स्टेप लोग उठाते हैं। लड़कियों को जिम्मेदारी या बोझ माना जाता है, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में डर और चिंता, दहेज, कानूनों का कार्यान्वयन सही तरीके से न होना। अब बात करते हैं कि घरेलू हिंसा के प्रति असंवेदनशील, लड़कियों में निरक्षरता, लड़कियों का अनैतिक व्यापार और उनकी बिक्री, यौन संचारित रोगों और एचआईवी एड्स के मामलों में वृद्धि, प्रसव के दौरान जटिलताएं, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे। बाल विवाह के परिणाम, इसके संबंध में बात करते हैं और जानकार बताते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ कानूनी प्रावधान है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। दहेज एक विषय है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दहेज का अर्थ है ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिमूर्ति जो
उसका कोई प्रकार हो सकता है या दूसरा तरीका हो सकता है या दान देने के लिए सहमति दी जाती है। ये सब चीजें दहेज में आती है। वधु द्वारा वर को या वर द्वारा वधु को, वधु या वर के माता पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ये सारी चीजें दहेज का उदाहरण मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। विवाह से पहले या विवाह के बाद दहेज देना, लेना, मांग करना और अथवा दहेज के लिए प्रचार करना भी अपराध है। कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी अथवा किसी रिश्तेदार की शादी पर दहेज लेता या देता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत सजा हो सकती है। अब दहेज के खिलाफ कानूनी प्रावधान, इसमें बात आती है दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो संशोधित अधिनियम है 1986। अब घरेलू हिंसा के विषय में बात करते हैं। ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये जो बातें हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। वाकई बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं कानूनी अधिकार के विषय में, महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। ये सारी चर्चा आप जरूर सुने, सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम यहां पर एक चर्चा कर रहे हैं जिसका विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में जान रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, सुनो शारदा 90.8 FM यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और इसके अंतर्गत अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घरेलू हिंसा के विषय में। घरेलू हिंसा का अभिप्राय ऐसे कार्य, चूक या आचरण से है, नंबर वन, जिसके अंतर्गत घरेलू संबंध में चाहे वो रिश्ता विवाह से हो या बिना विवाह के साथ रहने से हो, किसी महिला या किसी बच्चे को हानि या चोट पहुंचती है या उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा या तंदुरुस्ती को नुकसान या चोट पहुंचने की संभावना हो। नंबर दो, जिसमें घर के भीतर महिलाओं या बच्चों के प्रति हिंसात्मक दुर्व्यवहार शामिल है। घरेलू हिंसा के प्रकार, शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी, यौन दुर्व्यवहार या यौन दुर्व्यवहार की धमकी, मौखिक भावनात्मक और या मानसिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, पीड़िता और परिवार पर हिंसा का प्रभाव। इसके अंतर्गत बिंदु सामने आते हैं शारीरिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बच्चों पर प्रभाव। पहले प्रभाव की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक।

प्रभाव के विषय में। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके अंतर्गत चोटें, टूटी हड्डियां, सिर की चोटें, शरीर के किसी अंग का कटना और आंतरिक रक्त स्राव, पीड़ित अगर गर्भवती है तो गर्भपात होने, समय पूर्व दर्द उठने, भ्रूण को चोट पहुंचने या उसकी मौत होने का भारी खतरा होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इसके अंतर्गत बात सामने आती है बहुत ज्यादा तनाव में रहना, डर और चिंता का विषय, अवसाद, बार बार आलोचना का विषय बनाना, है ना। बच्चों पर प्रभाव, विशेषज्ञ बताते हैं इसके अंतर्गत बात सामने ये निकल कर आती है कि विकास और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आक्रामकता बढ़ती है, मित्रों, परिवार, अधिकारीगण से घुलने मिलने में बदलाव आता है, विद्यालय में कहीं ना कहीं किसी का एक अलग रवैया नजर आता है, या कुछ इस तरीके से बातें हैं। तो इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी प्रावधान क्या है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत पीड़ितों के लिए सुरक्षा संबंधी आदेश, कानूनी सहायता और राहत, इसके विषय में बात करते हैं। निषेध ये है कि ये कानून घरेलू हिंसा पर रोक लगाता है। पीड़िता जहां रह रही है वहां हिंसाकर्ता को जाने से रोकता है, हिंसाकर्ता को पीड़िता से बातचीत करने से रोकता है, घरेलू हिंसा से प्रभावित आश्रितों, अन्य संबंधितों के पास जाने से रोकता है। राहत क्या है? होने वाले खर्च के लिए, हुए नुकसान के लिए, पीड़िता और उसके बच्चे की चिकित्सा और भरण पोषण पर होने वाला खर्च प्रदान करना। कानूनी सहायता क्या है वो बात करते हैं। गरीब दीनहीन महिलाओं और बच्चों को जिनके पास कानूनी कार्रवाई के लिए साधन नहीं है उन्हें कानूनी सहायता देता है। गरीब और या बेरोजगार महिलाएं जिनके पास साधन नहीं है वो और उनके बच्चे किसी वकील से मुफ्त कानूनी सलाह और कानूनी सेवाएं ले सकते हैं उन मामलों में जहां गंभीर चोटें हों तो आपराधिक आरोप लगाना। अनैतिक व्यापार, ये सारी बातें एक मुख्य बिंदु के जरिए उसके अंदर सब हेडिंग के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जैसे कि एक विषय अनैतिक व्यापार, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि अनैतिक व्यापार का अर्थ है वे सभी गतिविधियां जिनमें महिलाओं और बच्चों को जबरदस्ती और या धोखे से देश के भीतर या सीमा पार ले जाना, उनकी बिक्री या खरीद करना शामिल है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि देह व्यापार, गैर कानूनी ढंग से गोद लेना, अंगों का ट्रांसप्लांट, ईंटों के भट्टों पर काम, मनोरंजन उद्योग, घरेलू काम, बलपूर्वक या सस्ती मजदूरी, जबरदस्ती शादियां, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का व्यापार, लेन देन, बाल विवाह, ये सब अनैतिक व्यापार के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब जाहिर सी बात है कि कुछ कारण होंगे, वो कौन कौन से कारण हैं अनैतिक व्यापार के, बात करते हैं। गरीबी, रोजगार की संभावना कम होना, पुरुष प्रधान संस्कृति, महिलाओं के अधिकारों की समझ कम होना, शिक्षा का निम्न स्तर, महिलाओं से भेदभाव और उन्हें हाशिए पर रखना, दहेज जैसी संस्कृति कारक। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है अनैतिक व्यापारों के पीड़ितों के लिए खतरे क्या है। मजदूरी कम दी जाती है तो रोक दी जाती है या मजदूरी नहीं दी जाती, काम का वातावरण खतरनाक होता है, हिंसक शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, नशीले पदार्थ और अन्य प्रकार के नशे की लत होना, इलाज की तरफ ध्यान न देना, मनोवैज्ञानिक सदमा, भावनात्मक सदमा, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अनैतिक व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1956, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, वर्ष 2012 में संशोधित। यौन उत्पीड़न, इसके विषय में हम बात करेंगे जरूर मगर एक छोटी से अंतराल के बाद। ये सारी जानकारी वाकई मुझे बताने में, आपसे डिस्कस करने में मुझे भी समझ मिल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, और यही एक वजह है कि इतना समय हो जाता है कि मैं ब्रेक भूल ही जाता हूँ। चलिए ब्रेक पर चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूँ गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ। विषय है यौन उत्पीड़न। इसके अंतर्गत बात सामने आती है क्योंकि ये सारी बातें हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनो शारदा 90.8 एफएम भी यही कहता है कि प्लीज हम सबको महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। घूरने, इशारे करने, छूने, टिप्पणी करने, यौन आक्रमण समेत यौन प्रकृति का कोई भी अशोभनीय या अनुचित व्यवहार यौन उत्पीड़न कहलाता है। इसकी जाहिर सी बातें के रूप हो सकते हैं, तो यौन उत्पीड़न के बारे में बात करते हैं। बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न या इसकी कोशिश। दूसरा बिंदु, यौन सहमति के लिए अवांछित दबाव डालना, अवांछित रूप से जानबूझकर छूना, ऊपर झुकना, घेरना या चुटकी काटना, अवांछित कामुक नजरें या इशारे, अवांछित पत्र, टेलीफोन कॉलें या कामुक प्रकृति की सामग्री, मिलने के लिए अवांछित दबाव बनाना, अवांछित यौन छेड़छाड़, चुटकुले, टिप्पणियां या प्रश्न, सीटी बजाना, सिसकारी भरना, दूसरों के सामने स्वयं को कामुक ढंग से छूना या रगड़ना, व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखना, घूरना, चेहरे पर हाव भाव लाना, आंख मारना, दूर से चूमने के इशारे करना या होठ चाटना, हाथों या शरीर के संचालन से कामुक इशारे करना। ये कुछ ऐसे रूप हैं जिसके अंतर्गत ये बातें आती हैं यौन उत्पीड़न के विषय में। ये सारी बातें हैं, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उसके विषय में विशेषज्ञ बताते हैं कि सदमे के बाद तनाव संबंधी विकार, बहुत समय तक चिंता, तनाव या डर बना रहना, सदमे के बाद के तनाव संबंधी विकार जैसे कि PTSD के लक्षण हो सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना। यौन उत्पीड़न के बाद कुछ महिलाएं कठिन और दर्दनाक अनुभूतियों से निपटने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। यौन संचारित संक्रमण, अगर यौन कार्य अवांछित या बलपूर्वक हुआ हो तो भी इसके दौरान यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। अवसाद यानी कि उदासी की भावनाएं अवसाद का लक्षण हो सकती हैं, जिनका व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। अब ये जानना जरूरी है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन सारी गतिविधियों के खिलाफ क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप उत्पीड़न की शिकार हैं तो अपने आसपास के लोगों, मित्रों या अजनबियों से मदद लें। अगर उत्पीड़न कॉलेज या विश्वविद्यालय में हुआ है तो कॉलेज की शिकायत समिति या अन्य किसी संवैधानिक निकाय में शिकायत करें। अगर ये सार्वजनिक स्थान पर हुआ है तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें, किसी महिला संगठन में शिकायत करें। बात करते हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी प्रावधान के विषय में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जैसे कि रोकथाम, संरक्षण और निषेध अधिनियम 2013, महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति निषेध अधिनियम 1986, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो। एक और पॉइंट आता है, बिंदु आता है वैधव्य की समस्याएं। बात सामने आती है, विधवा ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो। भारतीय समाज में विधवा की स्थिति दयनीय है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है, उन्हें अब शगुनी माना जाता है और उम्र की परवाह किए बिना उन्हें दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती और अक्सर उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। विधवा की समस्याएं क्या हैं वो बात करते हैं। इलाज संबंधी मुद्दे, इसमें बात सामने आती है कि महिलाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की भारी उपेक्षा की जाती है और इसे वर्जित माना जाता है। आर्थिक वित्तीय मुद्दे, भारत के अधिकांश परिवारों में पुरुष ही मुख्य रूप से कमाने वाला होता है। थोड़ी सी या बिना बचत और बिना नियमित आमदनी के महिला परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे, इसमें बात सामने आती है, आज तक भी विधवाओं को उनके पति की मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है और उन्हें परिवार में अभिशाप के रूप में देखा जाता है। उन्हें खास तरह के कपड़े पहनने और बर्ताव करने, सादा भोजन करने और खास दिनों पर उपवास करने के लिए मजबूर किया जाता है। कानूनी मुद्दे कौन कौन से हैं उसके विषय में बात करते हैं। आपने अधिकारों से अनजान, खास तौर पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ उस महिला के पास न्यायिक मदद प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होता है। चलिए, जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है और यही सारी बातें मैं एक रिसर्च के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और ये बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अन्य कानूनी प्रावधान एक विषय अभी मेरे सामने आना बाकी है, तो इसके बारे में अगले भाग में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 0120-40602055 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप मुझ तक जरूर पहुंचाएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। हम सबका अपना अपना हक है, हम किसी का हक ना मारें और महिलाओं को उनका हक आप जरूर दें।
अदरवाइज महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में यहाँ बात हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि वो सारी बातों को जानेंगी समझेंगी और फिर आपसे आपका हक मांग भी सकती हैं या कानून के जरिए वो अपना हक ले सकती हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
0: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जूस पीने का सही तरीका भी, चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है।
अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। सुनते हैं आज का विचार जो हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी में हमेशा ऐसे चलिए जैसे आपको कुछ नया सीखना है और आप जरूर सीखेंगे।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार के लिए। बहुत सही फरमाया आपने। अब इसी बात पर सुनिए अंग्रेजी में एक कथन।
2: नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। ये कथन है 20वीं शताब्दी के महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
3: जी, और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद, कुमारी पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद जी का।
2: अकोला महाराष्ट्र से राजेश कारिया
3: और ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
2: शास्त्री नगर बीड शहर महाराष्ट्र से किशन सपकाल
3: और मध्य प्रदेश सतना से प्रहलाद सिंह।
2: धन्यवाद आप सबको संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से संदेश भेजते रहिए।
3: तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपकी हमारी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संविधान की।
2: अब तक हमने जाना संविधान सभा, अनुच्छेदों, अनुसूचियों, उसकी आत्मा और उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, और अब लेते हैं आगे की जानकारी। फिर आया 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक दिन।
3: यही वो दिन था जब भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से देश भर में लागू हुआ और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ये वो दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और विश्व के सामने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा।
2: हमारा भारतीय संविधान न केवल हमारे कानूनी अधिकारों का संरक्षक है बल्कि ये हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक है।
3: श्रोताओं, ये हमारा संविधान ही है जिसके दिशा निर्देश में हम केंद्रीय, राज्य सरकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करते हैं। हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि इसने सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं वाले विशाल भारतीय समाज को एकजुटता और समानता के सूत्र में बांधा। यही हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत बात है।
2: भारत का संविधान हमारे देश का मूल कानूनी आधार है। ये सभी नागरिकों और संस्थाओं के लिए समान अवसर, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करता है।
3: ये जानना सुखद होगा श्रोताओं कि भारत का संविधान हस्तलिखित है। इसे हस्तलिपि विशेषज्ञ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा, बाद में इसे टाइप कराया गया। इसकी मूल प्रति में प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में आकर्षक कलाकृतियां हैं। इन कलाकृतियों को कलात्मक ढंग से बनाया था श्री नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। वे शांति निकेतन के कार्यकर्ता थे। संविधान पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में लिखा गया।
2: और ये जानना भी रोचक होगा कि भारत के संविधान की मूल प्रति में पन्ने साधारण कागज के नहीं हैं। वे पार्चमेंट पेपर पर लिखे गए हैं जो बहुत टिकाऊ होते हैं। संविधान की मूल प्रति को हीलियम गैस से भरे हुए एक विशेष केस में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है ताकि नमी, कीटाणु और ऑक्सीकरण के कारण ये खराब न हो जाए।
3: श्रोताओं, भारत के संविधान की आत्मा है इसकी प्रस्तावना जिसकी शुरुआत में लिखा गया है हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है जनता ही सर्वोपरि है।
2: तो ये थी जानकारी आज के लिए हमारे संविधान की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: भारत के संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: भारत के संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया है?
3: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर
2: और audio@cit.nic.in है हमारी ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
3: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा आज का पहला कार्यक्रम है आउट इन द गार्डन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें बताया गया है कि बच्चे आनंद पूर्वक एक सुंदर बगीचे में प्राकृतिक वातावरण में खेलते हैं, पेड़ पौधों और फूलों की सुंदरता को निहारते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। वे अपने मित्रों को भी आमंत्रित करते हैं कि वे उनके साथ मिलकर खेल और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें।
3: Let's recite the poem with children. Out in the garden each fine day.
4: Out in the garden each fine day. With my ball, I like to play.
5: With my ball, I like to play.
4: I bounce my ball, I throw my ball.
5: I bounce my ball, I throw my ball.
4: I catch my ball on each fine day.
5: I catch my ball on each fine day.
4: Out in the garden, each fine day.
5: Out in the garden, each fine day.
4: With my kite, I like to play.
5: With my kite, I like to play.
4: I tug my kite, I pull my kite.
5: I tug my kite, I pull my kite.
4: I fly my kite on each fine day.
5: I fly my kite on each fine day.
4: Out in the garden, each fine day.
5: Out in the garden, each fine day.
4: With my friends, I like to play.
5: With my friends, I like to play.
4: We run and skip.
5: We run and skip.
4: We jump and sway.
5: We jump and sway.
4: We slide and swing.
5: We slide and swing.
4: On each fine day.
5: On each fine day.
3: And now, we bring to you the song of this poem.

0: We run and skip, we jump and swim, we slide and swing on each fine day.
1: Dear children, you were just listening to this program, Out in the Garden. Hope you have liked it. It's always very exciting and refreshing to be in the garden, isn't it? As you have just heard children sing, they are not only enjoying the beauty of the garden, but also they are playing with great joy. Now, just a question. How often do you visit a garden or go outside in fresh air? You know, being in fresh air and playing keeps us fit and healthy. अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत आउट इन द गार्डन। और अब बारी है अगले कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है मेजर शैतान सिंह।
2: इस कार्यक्रम में मेजर शैतान सिंह के पराक्रम और शौर्य की चर्चा की गई है और बताया गया है कि भारत चीन युद्ध के समय उन्होंने कितनी वीरता से चीनी सेना का मुकाबला किया और उनके हौसले पस्त कर दिए। युद्ध में अपनी अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए वो शहीद हो गए, जिसके लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थी।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह?
3: हाँ।
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर बना क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ।
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: चलो बता देते हैं।
3: हाँ। जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ

0: चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
1: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
2: जी सर।
1: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
1: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
2: जी सर।
1: जय हिंद।
2: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: दरअसल चीनी सैनिकों को मालूम हो गया था कि भारतीय सैनिकों के पास गोलियां बहुत कम मात्रा में हैं। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय टुकड़ियों के पास रही सही गोलियां भी समाप्त हो जाएं। जानवरों को भेजकर वो भारतीय सेना की स्थिति और प्रतिक्रिया का भी पता लगाना चाहते थे।
0: लेकिन भारतीय कमांडर ने अपनी सूझबूझ से टुकड़ी के कारतूस बचा लिए। ये कमांडर कोई और नहीं, मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें भारत चीन के युद्ध में अपूर्व शौर्य दिखाने पर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: एक दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए।
1: अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें भारत संघ की कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया।
0: अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चाबंदी करने का आदेश दिया।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
2: फायर!
4: आगे बढ़ो।
5: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
6: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं,
5: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
3: जी सर।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। रेजांगला घाटी में भारतीय सेना की दो चौकियां थीं। मेजर शैतान सिंह बारी बारी से दोनों चौकियों में चीनी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच बिना सुरक्षा के भाग भाग कर जाते और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाते।
2: हुकम सिंह।
5: जी सर।
2: एलएम जी सवाल छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
5: अच्छा।
4: सर, यही मशीन गन।
5: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को।
4: जल्दी करो।
5: जी सर। बांध दिया सर। ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ सर, बांध।
5: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी टाइट कर, खींच कर, खींच के इस तरफ ले। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
5: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
5: सब यहां सर टिका लीजिए।
4: सर
5: ऐसे
6: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
6: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
6: साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
4: साहब,
6: तुम लोग आगे निकलो।
4: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
6: नहीं, नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
4: नहीं साहब।
6: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
4: नहीं साहब,
6: नहीं, आदेश, इट्स एन ऑर्डर।
4: सर,
6: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांगला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
0: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
3: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
1: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: संग्राम के इस महानायक को हमारा शत शत नमन। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अजीत को आज्ञा दीजिए
3: और उमंग की तकनीकी टीम के साथ विमलेश को भी नमस्कार। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं। सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला
0: क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है, जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं, या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें, जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11666 पर संपर्क करें।

0: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गगन, आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
1: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वाज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्कप्लेस को हैंडल करे।
0: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है। क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहाँ हम अपनी बात रख पाए, कह पाए? तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकल कर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
1: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हम मैंने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कंप्लेंट। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉई, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
0: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं?
1: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
0: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सोलिसिटर्स, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं। और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी, इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम, ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूँ कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं। उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जिस जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफ एयर हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है

0: होती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे
1: जी।
0: तो वो कंसीलेशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
1: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी?
0: हाँ ऐसा भी होता है, पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं ICC में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते हैं
1: जी।
0: तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें, वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत
1: जी जी।
0: तो आके कंप्लेन कर देते हैं। पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
1: बहुत खूबसूरत। सोलिसिटर्स कहने का मतलब ये कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ICC कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती हैं और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहाँ जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहे।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी, इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हैं, पीछे से कमेंट मार रहे हैं, या पीछे से उसको अनवेलकम जेस्चर दे रहे हैं, या इशारों में भी कुछ बोल रहे हैं, कोई आपका कैसा भी अनवेलकम कंडक्ट जो दूसरे किसी को अच्छा ना लगे, फीमेल्स उसको ना पॉजिटिवली लें, आपका चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फिजिकल हो, जिसको कि वो ठीक ना उनको लगे, उनको अनकम्फर्टेबल महसूस कराए, तो जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा हो, या फीमेल को लगे कि वो डिस्टर्ब्ड हो गई हैं, या अपनी वर्क प्लेस पे वो कंफर्टेबल सेफ ना फील करे,
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आती हैं।
0: मैम एक बात बताइए, मैं इससे अलग हटकर बात कर रहा हूँ और लाइट नोट पर बात करना चाहूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि अरे मैम आगे जैसे होता है ना कि टीचर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कुछ तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
1: बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, हमारे लिए काम जरूर ऐसा है, पर हम चीजों को इट्स नॉट दैट, एक होता है ना, हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग। कुछ चीजें होती है हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई है।
0: मैम ये तो आपने
1: तो हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते हैं,
0: जबकि बहुत गलत है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है। एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखिए। निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार, जहां आपकी माँ हो, बहन हो, उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। सो प्लीज आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूं कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है। विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। मेरे यानी गगन के साथ राब्ता है, राब्ता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेन को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
1: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेन्स भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि मेल्स डोंट हैव एनी राइट। आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेन कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ्स हैं वो रेस्ट्रेंट पार्टी को देनी पड़ता है। पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल। सो इट गोज एज अ
0: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको दंड का अधिकारी है।
1: इट्स अ मैलफिस कंप्लेन, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन।
0: यस,
1: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं रेस्ट
0: पनिशमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले जो बात आती है, बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी ICC में ही आते हैं?
1: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सब ICC के।
0: मैम, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन, अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन खैर, ये आपको आना चाहिए कि कला है कि आप कब कहाँ कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे। तो मैम, आपकी पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
1: अपने आप से प्ले,
0: आप अपने आप से। चलिए, मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं, और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है। हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहां हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं, और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाई चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकता है।
0: ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विदिन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं, तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं।

0: आईसीसी कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
1: जी, जी.
0: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेंट ले लेते हैं. फिर आईसीसी अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है. अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसीलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं. अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी आईसीसी की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है. फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी, देन इट गोज टू द वीसी ऑफिस फॉर द अप्रूवल.
1: ओके.
0: देन आफ्टर द रिकमेंडेशन, देन द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन दोज रिकमेंडेशंस एंड देन द ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज.
1: इस प्रोसेस को कितना समय लग जाता है मैम?
0: वी एक्चुअली हैव अ डेडलाइन ऑफ 90 डेज. हमें किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए वैसे 90 डेज होते हैं, बट वी ट्राई टू काइंड ऑफ गिव जस्टिस, या हम किसी भी एक नतीजे पे कोशिश करते हैं कि हम 20 दिन, 15 से 20 दिन में आ जाएं. एक थोड़ा सा ताकि, और इस अगर कुछ ज्यादा होता है तो उस बीच में हम एक रेस्ट्रेन ऑर्डर सा इशू कर देते हैं, रेस्ट्रेन जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए.
1: क्या कभी ऐसा होता है कि, या ये प्रावधान है कि कोई चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो रिवील ना हो, ऐसा होता है?
0: आईसीसी के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है. कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी आईसीसी की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती. हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या यूजीसी में जब हम डेटा भी भेजते हैं तो उसमें भी सारा मास्ट होता है. कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता. इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से. तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल.
1: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
0: आईसीसी पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी आईसीसी प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं. नहीं तो आईसीसी की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं.
1: ठीक है,
0: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है. और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है आईसीसी का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5.
1: ग्रेट. फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए. एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हो, यहाँ तक लोग ना पहुंचें? हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स, नो डाउट कि आपको पहुंचने की बहुत ज़रूरत है. मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी का ख्याल रखिए, किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान, रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी. ये मेरा मानना, सोचना है. तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज जाता है?
0: Actually, there should be zero tolerance for sexual harassment. It is the shared responsibility of all. अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं. अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाएं, वो बहुत जरूरी है. आप हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है. अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज में बहुत होता है.
1: जी जी,
0: सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं तो नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं. तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना, तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे. और जब एक चीज, ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज, हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता. मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म.
1: वेरी गुड, वेरी गुड. यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप, और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा. गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे. तो मैं यही कहूंगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है. मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है. जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है, वो ये खाता है, ये पीता है, उसको छोटे छोटी-छोटी बातें अच्छी लगती है, छोटी-छोटी बात पर वो नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है, पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। वक्त का इशारा मुझे कह रहा है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और मेरा फंडा यही है, अगर मैं इस बात का एक समअप करूं या निष्कर्ष निकालूं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, ये मेरा मंत्र है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग टेंशन कहते हैं ना कि लेने का नहीं देने का, नहीं, हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ICC से डॉक्टर एकता चौधरी। ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूं 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, नमस्कार, थैंक यू।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं,
2: अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली। हाँ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मलाजू तेरा दिल, दिल, दिल, मलाजू तेरा दिल।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
0: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
0: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hello, my best friend Tinku.
2: Hello, my dear friend Tara.
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: डरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दे नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हर 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: डॉक्टर,

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: रंग धरती का गोटे रंग है लहरिया।
1: और दोनों को ही चाहतो ने चाहतो से मारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा।
2: अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी कौन थी औरतें?
6: अरे मेरी सहेलियां, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
5: क्या है राज?
6: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
7: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।